0: What's good, y'all? It's your girl, K Goddess, and you are now rocking with YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: धोखाधड़ी चेतावनी अपना क्यों नहीं लॉग इन पासवर्ड या MF ए कभी साझा न करें। कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें। अपने पासवर्ड या MF ए कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें। कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा। यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MF ए अनुरोध का उत्तर न दें। संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें। यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है।
2: It's time to join your college newspaper, Pandora's Box. Are you a good storyteller? Do you like writing? Are you a curious person? Then come write with us at Pandora's Box. It's your college paper. We encourage all majors to join. There are positions for graphic editors and business managers. Our work at PB tells the stories of York and the surrounding Jamaica community. The newspaper is a platform for all students, faculty, and local voices to learn and practice the art of news gathering. PB staff are the watchdogs for the Jamaica community and give a voice to the college's student body. Get experience for life in the real world. Report and write with us.
3: As a veteran of the United States military, I can finally get the opportunity to enjoy special events, things that we couldn't afford, thanks to VetTix.
4: Every empty seat at a concert, a game, or a play is a missed opportunity to say thanks to a veteran and service member. We can give our veterans a special event where they too can create their own cherished memories. Visit vettix.org. Find out how you can make a difference in a veteran's life.
5: Eddie! What up, York College? It's Guru Chris, and you listen to YCRadio.org, the voice of today's generation.

0: mercyradio.org, the voice of today's generation.
1: धोखाधड़ी चेतावनी. अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या MAF. ए. कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MAF. ए. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MAF ए अनुरोध का उत्तर न दे. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MAF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
2: This is the professor, Dr. Ron Daniels, inviting you to join me for enlightening interviews and informative engagement with our audience on Vantage Point Mondays, 3:00 p.m. here on WBAI 99.5 FM in collaboration with YCRadio.org.
3: As a veteran of the United States military, I can finally get the opportunity to enjoy special events, things that we couldn't afford, thanks to VetTix. Every empty seat at a concert, a game, or a play is a missed opportunity to say thanks to a veteran and service member. We can give our veterans a special event where they too can create their own cherished memories. Visit VetTix.org. Find out how you can make a difference in a veteran's life.
4: Are you looking for a tutor? Do you need to brush up on your research or speaking skills? Perhaps you just want to boost your confidence. Well, York College Collaborative Learning Center offers free tutoring in person and online in room AC1C18. Meet with a tutor at york.cuny.edu/CLC or contact them at email clc@york.cuny.edu. Call them at 718-262-2303 or 718-262-2494. Again, meet with them in person or online. Meet with the tutor at york.cuny.edu/CLC or contact them via email at clc@york.cuny.edu. Call them at 718-262-2303 or 718-262-2494. This is brought to you by York College Collaborative Learning.
5: What's up, world? It's King Hearts. You are listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.